0: वाय नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद कर सोई इंटरनेट पैकेज नया जड़ान को लागी गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागी एक महीना फ्री इंटरनेट वाय नेट अब सब कनेक्टेड
1: हमी जन्मदात्री शिकारी हूँ शिकारी पूरे दैलेख मलाई चाहिए
2: VFX सिनेमाज कोराही दश नारायण पुरसौडी खुला दाङमा एक्शन नायक विराज भट्टद्वारा अभिनीत भव्य प्रदर्शन भइरहेको छ नेपाली कथानक चलचित्र राम नाम सत्य
3: हेलो फ्रम अमेरिका वाक वाका वाशिंगटन डीसी जस्ट डब्लु बस हेलो हेलो हेलो
2: त्यसै गरी 2083 साल वैशाख 1 गते देखि नेपाली कथानक चलचित्र पहाड़ प्रदर्शन हुने पनि जानकारी गराउँदछौ
4: घर घर अनि गृहिणीको साथ हुलासले बनाउँदैछ परिवार एक साथ
5: बुबालाई हुलास आटाको रोटीको स्वाद होस् वा आमालाई बासमती चामलको भात खानामा रहर दालको साथ हुन्छन् सबै खाएर गदगद हुलासको पापड़
4: हुलास फुड्स का उत्पादहरू हुलास आटा हुलास बासमती राइस जीरा मसिनो राइस
5: हुलास को कुरुम कुरुम चिउरा हुलास को इडली राइस
4: हुलासले बनाउँदैछ परिवार एक साथ

0: का बेस्ट प्रोडक्ट हरू कोकोनट चोकोनट वीटा मिल्क बटर प्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस अडगुरी बिहान

0: बजार को व्यवस्था
1: अर्डर अनुसार खाली बोतल को उत्पादन
0: 20 लीटर जार में होम डिलीवरी सेवा
1: संपर्क सुर्गद्वारी ड्रिंकिंग वाटर पुरानो बस पार्क प्रोप्राइटर धर्मेन्द्र केसी फोन नंबर 082-5630-21 होटल दांगजारी नजिक जीवन चौधरी मोबाइल नंबर 98478-62-375
0: शुद्ध पानी पिउनुहोस् स्वस्थ जीवन जिउनुहोस्।

0: बाय नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सबै कनेक्टेड।
1: नाक कान तथा घाटी रोग को उपचार सेवा अब सुवर्ण मेडिकल हल घोराही दांग में।
2: नाक कान तथा घाटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुवर्ण बुढ़ामगर द्वारा प्रत्येक दिन बिरामी चेक जांच भइरहेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। सम्बन्धित रोग का बिरामीले समयमै सम्पर्क गरी आफ्नो रोग को पूर्ण निदान गर्नुहोस्।
1: अन्य सेवाहरू
3: हाट जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर कृष्ण तिमिल सिन्हा द्वारा दैनिक बिरामी चेक जांच भइरहेको जानकारी गराउँदछौं।
4: सुगर थायराइड तथा हार्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर एसएन यादव द्वारा प्रत्येक महीना को दोस्रो शुक्रवार बिरामी चेक जांच भइरहेको जानकारी गराउँदछौं।
3: बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्दीप पोखरेल द्वारा दैनिक बिरामी चेक जांच भइरहेको जानकारी गराउँदछौं।
5: प्रत्येक दिन डाक्टर नवराज केसी द्वारा बिरामीहरूको चेक जांच तथा उपचार सेवा।
6: फोनबाट पनि नाम दर्ता गर्न सकिनेछ।
7: सम्पर्क सुवर्ण मेडिकल हल घोराही 14 आर्मी रोड। सम्पर्क फोन नम्बर 082-5161-694। सम्पर्क मोबाइल नम्बरहरू 98578-30145, 98478-30153 र 98649-44944।

0: बाय नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट जो 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सबै कनेक्टेड।
1: तपाईं यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम ट्रेसिंग टाइम। यदि तपाईँ पनि आफूलाई मन परेको गीत सुन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5784594 डायल गरेर आफूलाई मन परेको गीत सुन्न सक्नुहुन्छ।

0: ஐ புரிமைன அரிமைனோதியாரையனவல் தர பைரிமைன
1: राम राम अस्तिन सुगर गीत गई कहाँ से के बोलले
0: हजुर घोराई दिसे दजिराम चौधरी
1: नदीराम चौधरी ना
0: हजुर
1: और का बा सबको ठीक बा
0: एकदम ठीक ठाक बा सर
1: हो मिनी खाली के नहीं था
0: मिनी हमरा अलिक पाच खाली सर चार बजे
1: हो ना
0: हजुर
1: अखी काम के सिलसिला में कौन गिर लिया अखी
0: अखी सुरके डैंग में बैठी सर
1: सुरके डैंग में बैठी आपने गांव ठाउँ अपन गांव ठाउँ में बैठी है
0: हजुर हजुर गांव ठाउँ में बैठी
1: हो ना
0: हजुर
1: असिन गर्नी बा कसी का दिन बिती बा और
0: हमरा 7:30 बजे से काम करती है जैसे 5:30 बजे से काम शुरू हुई था
1: हो ना
0: और सही का दिन भर हम सीतर मरना इन काम में लगे
1: ठीक बा कार्यक्रम में समझली सुगर गीत फिका दिले और कुछ बाकी
0: एक दो लाइन गीत दे दो
1: ल शुरू करें
0: चुनावमा जितेकोलाई फुलमाला गुच्छा भो चुनावमा जितेकोलाई फुलमाला गुच्छा भो चुनावमा जितेकोलाई फुलमाला गुच्छा भो चुनावमा जितेकोलाई हात्ती आयो जनतालाई खुस्रा भो हात्ती आयो जनतालाई खुस्रा भो हात्ती आयो जनतालाई खुस्रा भो आयो पेट्रोल डिजल मती तेलको महँगी बढी भो पेट्रोल डिजल मती तेलको महँगी बढी भो पेट्रोल डिजल मती तेलको महँगी बढी भो पेट्रोल डिजल मती तेलको स्वास्थ्य शिक्षा नि शुल्क नराम्री भो स्वास्थ्य शिक्षा नि शुल्क सांसदले खोज्दैछन् रे बालनको जवाफ सांसदले खोज्दैछन् रे बालनको जवाफ सांसदले खोज्दैछन् रे जहिले पनि किसानलाई मलबीको अभाव जहिले पनि किसानलाई मलबीको अभाव जहिले पनि किसानलाई मलबीको अभाव जहिले पनि किसानले हजुर अठै खबर
1: कत्र हो ना ल सुगर गीत गादेली समय सान्दर्भिक अनि यथार्थ फे रह अपने गीत मन सुगर गीत गादेली अपना क्ला धेरै धेरै धन्यवाद बा एकछि बाछ हाम्रो सुगर गीत बजिने बाटे के सम्झ छ हटी
0: सर्वप्रथम त अपने ना प्रविधि सँगरेन अनि दजाम बिहि चिन्ना निचिन्ना सब पुरै घर परिवार सम्पूर्ण सम्झेकी बिदाई दिउँ राम राम
1: उहाँहरूलाई दधिराम चौधरी रामपुरके सँगै हाल त पक्कै आप अपने पाला सुने 82-5754 नम्बर डायलकै गाइसक्ने बाटी अपनाउक्रा प्रतिभा दान्सी कदर कर्ती हाम्रो पुरस्कारकै व्यवस्था कैदरकले हाम्रो अपनाउक्रा रिचार्ज कार्ड प्राप्त गर्ने बाटी 100 रुपियाँ रिचार्ज कार्ड उस्तक अपने प्राप्त गर्ने बाटी जीवन चौधरीको तर्फ से स्वर्गद्वारी वाटर सप्लाईको तर्फ से अपना गर्मीमा जुर जुर पानी एक कार्टुन अपना प्राप्त गर्ने बाटी

0: पक्कफे मैगर का बिलाम कर अपने माच में पर सुगर की धैरख लही पक्कफे रहा रंगीत हुई कना हमारा विश्वास था पक्कफे अत्र बेला प्राविधिक रूप में मैंने साथ देती बैठा शांत कुमार बुढ़ा मगर आई सीखने बैठी शून्य बयासी पांच साठ आठ सौ चौवन नंबर डायल के गना अपन प्रतिभा धरस सीखने बाटी अपन कविता गजल ज्यादा सुनाई सीखने बाटी विषय वस्तु का नाम होगा से जुनसुक विषय वस्तु हुई से फे उठा माया प्रेम की हुई से उठा थारू संस्कार संस्कृति रहन सहन हरेक चीज के एक विषय वस्तु बना के अपन रचना कई कन अपन प्रतिभा सुनाई सीखने बाटी फे अपन थारू उनके हक अधिकार के बात उठा के उठा कि जाओस् जुनसुक अक्ठो विषय वस्तु बना के अपन प्रतिभा सुनाई सीखने बाटी गीत के माध्यम से अपन भावना के माध्यम से साहित्यिक माध्यम से आई सीखने बाटी शून्य बयासी पांच साठी आठ सौ चौन नंबर डायल के आई सीखने बाटी हमारा प्रत्येक बिहार का दिन ऐना करती दुई बजे का मध्य पश्चिम हाईलाइट तो करीब करीब हम तीन बजे सम्म रहना करथे यहां से हम सुकर सुकर गीत बास फे हमारा धरना करथे अपना गांव ठाव अनुदान से हुए सब चैनार बनिया हमारा प्रयास फिर था पुस्तक थारू संस्कार संस्कृति के बारे में डांसन डांसी उजागर करना हमार प्रयास फिर था अत्र बेला क्यू संग्रह हमार संपर्क में इना तैयारी में बाट आर्सेकल बाट स्वागत करदारी हेलो राम राम
1: राम राम
0: राम राम कहाँ से के बोल सिंगौरा से खुशीराम चौधरी ना मिल चलिटी बाटी कहाँ हो दन से आवाज पड़ी हो न ये व्यस्तता के समय में फिर अपना कार्यक्रम समझल बाटी ठीक बात दूर खुशी लागल क्या सुने इतिहास ल शुरू करी
1: तेरा बूंदी पनिया रे तू हरे लागल दुखारी बोलगानी नजरा के वरिया तू हर पिया दिगा तू बोलगानी नजरा के वरिया तू हर गानी दिगा तू अरे सांझिया पियावारे गौना पिया कांगीरा अरे गौना पिया कांगीरा खोया पाना पियावा की कथमुना खोया पाना पियावा की कथमुना
0: अत्र हो ना लसुगर गीत फिर सुना दिली मिनी खैली की नहीं था मिनी खैली की नहीं अब एक गजे पास है ना ल ठीक बा मजा से काम कर भी अब मिल चली ना ड्राइवर अलग से फिर डांसे अलग रिस्क फिर था नहीं तरह दान से ख्याल करके ना काम कर भी ध्यान देके ना काम कर भी असिन व्यस्तता के समय में फिर हमारा समझली कार्यक्रम में सहभागी जोना दिली अपने का धन्यवाद बा छुटना से अगारी की समझ सहटी धन्यवाद राम राम वहां खुशीराम चौधरी झिंगौरा से समझल र आप हम कार्यक्रम की पुछार पुछार हो आश्याकल बाटी आप हम विदा होकर जय पर्ना बिठा शुरू में समझल रह दधीराम चौधरी को राई दुई रामपुर से समझल रह उसका छित्रु चौधरी को राई सत्र करजाही से समझल रह उसका खुशीराम चौधरी झिंगौरा से समझल रह आज तीन जैन से संगरेन सिकल हम कब गाफ कर पैली वहां प्रतिभा सुन पैली आप हम विदा होकर जय पर्ना बिठा आप एक झन विजेता आफै बनाई पर्नाबिल आप हाम्रो आश्रम र खुशीराम चौधरी नै विजेता बनाई थिए झिङ्गुरा केही संग्रह उठ उहाँकला फुकफे अपना एक हप्ता भित्र सम्पर्क गर्बी रेडियो मध्य पश्चिममा आफ्नो प्राप्त करकली 100 रुपियाँ रिचार्जकार वस्तक जीवन चौधरी की तर्फ से एक कार्टुन पानी अपन प्राप्त करकली पकफे विठा आज हाम्रो अत्रह करिकाउ अरू हप्ता पकफे भ्याटी अत्र बेलासम्म कार्यक्रम सुनको साथीले अपन थोक्नकला धिर्सी धिर धन्यवाद वस्तक आज महिना महिना प्राविधिक रूपमा साथ दिएला शान्त कुमार बुढामगर अपनकला फेरि धिर्सी धर धन्यवाद दिती उसँग एक कार्टुन पानी फेरि उपलब्ध गराएर जीवन चौधरी फेरि हाम्रो धन्यवाद दिए साथी विठा आजुकला मै बिदा फेरि मै शालिक राम चौधरी फेरि औ र बिहिबार कदी फेरि हाम्रो भेट हुने बा रिरी मध्यपश्चिम सुन्टी कर्बी राम राम।

राम राम सन्झे 5 बजे थारूभाषक मध्यपश्चिम खबरमा शालिक राम चौधरी हार्दिक स्वागत बा। उपत्यका मेयर्स फोरमसे विद्यालयमा आइतबार विदा दिन निर्णय फिर्ता लिए आग्रह राखल। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा बसेको फोरमको बैठकसे सरकारसे संविधान विपरीत विद्यालयमा विदा दिन निर्णय गर्लक निष्कर्ष निकृति विदा फिर्ता लिए माग गर्लक हो। मेयर्स फोरमका अध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर श्री बाबु महर्जनसे सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनिती आवश्यक पर्लसे कानूनी प्रक्रियामा जैना चेतावनी समेत दिएरखल। शिक्षा ऐन अनुसार विद्यालय वर्षमा 220 दिन संचालन हुनुपर्थ्यो, तर सरकारले अप्रत्याशित रूपमा आइतबार विदा दिन निर्णय गरेर अध्ययन अध्यापनमा प्रभावित हुन अवस्था सिर्जना हुलक उहाँको काहिरलहिन। सरकारको निर्णयले विद्यालयको 190 दिन फे संचालन गर कठिनाई हुन दिग्जिथा। पालिकाले आफ्नो स्वैच्छिक क्यालेण्डर बनासेकलक अवस्थामा केन्द्र सरकारले राजपत्रमा जो सूचना प्रकाशित गरिकन निर्णय गर्न संविधान र शिक्षा ऐनको मर्म विपरीत रहलक महर्जन बतुवा रखल। बैठकले आजको समाधान खोज काठमाडौँ उपत्यकाको मेयर्स फोरमको सचिवालय हन अध्ययनको जिम्मा देखिल्बा। सहकारीमा हिलोक व्यथित जाँचबुझ आयोगले लघु सहकारी संस्था दर्ता निकर ओ शाखा थपको स्वीकृति रोक सिफारिस गराखल। भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काल सार्वजनिक करलक प्रतिवेदनसे लघु सहकारी संस्था दर्ता निकर शाखा वा सेवा केन्द्र ख्वाल स्वीकृत निधि ओ एक से धिर शाखा संचालनमा रलक सहकारी हन हिसाब रापसाप कैकन शाखा बन्द कर लगाइकलाई सिफारिश गर्लक हो। प्रतिवेदनसे अखिक व्यथित व्यवस्थापन हुइलपास सभ्यता अध्ययन कैकन प्राधिकरणको सिफारिशमा पालिकाहन दर्ता गर्न अधिकार सुम्पना व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागू गर पर्न सुझाव दिएरखल। स्वावलम्बन ओ पारस्परिक सहयोगको भावनामा सञ्चालन हुन यी व्यावसायिक कार्यक्षेत्र संस्था दर्ताको बखत बढ़ीमा एकठो पालिका मकेल हुई पर्ना उल्लेख बा। नियामक निकायक पदाधिकारी तथा अभियान कर्मी से जो सहकारी सिद्धान्त ओ व्यवसायिक दुरूपयोगमा सहयोग पुगिल घोषले नेपालभर कार्यक्षेत्र विस्तारको स्वीकृत देखिलक प्रतिवेदनमा उल्लेख बा। सहकारी एन 2074को भावना विपरीत संस्थाकर्ता करलकमा जिम्मेवार अधिकृत तथा पालिकाका कर्मचारी बारे अनुसन्धान कैकन कार्यवाही करफे आयोगसे सिफारिश गरि राखल। चितवनको जायोडिन बायोटेक उद्योगसे क्यान्सरको औषधि बनिन कच्चा पदार्थ उत्पादन शुरू गरिराखल। भरतपुर महानगरपालिका 16 शरणपुरमा रहलक यी उद्योगसे नेपाली जड़ीबुटी प्रशोधन कैकन क्यान्सरको औषधि बनिन कच्चा पदार्थ उत्पादन कैकन भारत निर्यात समेत गर लगलग हो। उद्योगको अध्यक्ष जिना नारायण बहादुर छेत्रीसे अत्याधुनिक उपकरणको प्रयोग कैकन कच्चा पदार्थ उत्पादन कैकन निर्यात गर लगलग बटुवा रखल। हाल दुई कच्चा पदार्थ उत्पादन गर सकलक यी उद्योगसे 10-12 प्रकारका कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न लक्ष्य लिएर राखल। हेटौडाको बासामाडीमा रलक इभान्स लाइफ साइन्स नामक उद्योगसे लौट सल्लो प्रशोधन कैकन सहायक कच्चा पदार्थ उत्पादन कैकन चितवनमा पुनः प्रशोधन गरिगिलक उहाँको काहीबाटिन। यी कच्चा पदार्थ 8 लाख से 25 लाखसम्म प्रति किलो मूल्य पर्न करलबा। यी कच्चा पदार्थ पाकिस्तान बंगलादेश लगायतका एसियाली देशमा निर्यात गर्न अपनाउनको योजना रलक उहाँ जानकारी दिएरखल। औसत मिति से 6 दिन अगाड़ी जो भारत का केरला में आईपुगलक मनसूनी वायु को गति सुस्त देखिल्बा। शुरू में गति मजा हुई सफे कुछ दिन पास पश्चिमी वायु से ढकेलकन मनसूनी वायु को गति कमजोर हुई आही दक्षिण भारतसम आईपुग निश्चक त्रिभुवन विश्वविद्यालय का जल तथा मौसम विज्ञान का सह प्राध्यापक विनोद पोखरियल जानकारी देरखल। वहां अनुसार दक्षिणी बंगाल का खाड़ी में मनसून का गति सुस्त देखिल घोड़से नेपाल भित्रना मिति अनिश्चित हो रहल। सामान्यतया भारत का केरला में 30 तारीकमा आइपुग्लसे मनसून आकर 12 दिन पाछ नेपालका पूर्वी भेगमा आइपुग्छ। यी पाछ केरलामा 6 दिन अगाडि अर्थात मे 24 जो मनसून आइपुग्लको केरला आइसम्म गति तीव्र रलसेफे 5-6 दिनमा सुस्त बन्लको। गैलक वर्ष सरदरसे 15 दिन अगाडि जो मनसून नेपाल प्रवेश गरल रह। नेपालमा अखि पश्चिमी वायुसे वर्षा गर्ति रहलबा यी फ्यारा प्री मनसूनमा औसतसे धुर पानी परलबा। ओ ज्योतिपुञ्जक एजुकेशन ग्रुपको आयोजनामा शिक्षक कलाका शिक्षण सिकाइमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआईको प्रभावकारी प्रयोग सम्बन्धी 3 दिने तालिम आज
कोराहीमा शुरू हो रहल ज्योतिपुञ्ज एजुकेशन ग्रुप दाङसे संचालित कोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 भरतपुर मलक ज्योतिपुञ्ज आवासीय माध्यमिक विद्यालय ओ कोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 रामपुर मरलक ज्योतिपुञ्ज मोडेल इंग्लिश स्कूलका शिक्षकको कनकला तालिम शुरू गरिगेलक ज्योतिपुञ्ज आवासीय माध्यमिक विद्यालयका प्रिन्सिपल बुद्धिराज अधिकारी से जानकारी दिएर तालिमको प्रशिक्षकमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का प्रभावकारी प्रयोग का विज्ञ होमराज खड़का हुईट तालीम प्रशिक्षण सिकाई में कृत्रिम बुद्धिमता एआई का परिचय व्याकर टूल्स एआई का आधारित प्रयोग देखि उन्नत प्रयोग समय अवस्था एआई में आधारित शिक्षण सामग्री निर्णय निर्माण ओ व्याकर प्रयोग एआई का व्यावहारिक प्रयोग कक्षा कोठा में प्रभावकारी रूप में प्रयोग लगायत का विषय में सैद्धांतिक व प्रयोगत्मक अभ्यास में आधारित 3 दिन समय प्रशिक्षण दीजिना प्रिंसिपल अधिकारी से जानकारी दे हुईठा थाजुक थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर अत्रह काल संज्याफे थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर सुन सक्ने बाटी अखसा खबरमा से समाचार कक्षक सबको संग्रहणसँग वैशालिक राम चौधरी विदाई टू रिरी मध्यपश्चिम उनिटी रवि राम राम।